0: उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है।
2: முதல் அலைவரிசை 936 கிலோ ஹெர்ட்ஸில் நேயர்கள் இனி கேட்கலாம் அரங்கிசை. இன்றைய அரங்கிசையில் பூசணி கல்யாணராமன் அவர்களின் பாட்டினை கேட்டு ரசிக்கலாம். டிவி ராமானுஜாச்சார்லு அவர்கள் வயலின், சேலம் கே ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் மிருதங்கம். அரங்கிசையில் தொடக்கமாக வரவல்லப என தொடங்கும் ஜி என் பாலசுப்ரமணியம் இயற்றியது ஹம்சத்வணி ராகம் ஆதிதாளம்.

0: 70 और 35 से
1: आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A वर डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनजस्ट प्रोविजंस व्हिच वर अबॉलिश्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2019 सिंस देन द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर हैज एक्सेलरेटेड बोथ हेरिटेज एंड डेवलपमेंट हैव रिसीव्ड अ बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव इंक्रीज्ड एंड पीपल हैव विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ द पीपल देयर आर हैप्पी
0: तो नागरिक तो वहां खुश है
2: In Jharkhand, the students' protest against the alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission and Jharkhand Staff Selection Commission examinations being held at Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi is intensifying with each passing day. The agitating students have announced plans to lay siege to the Jharkhand Assembly during the upcoming monsoon session to press their demands. India enjoyed a mixed day at the Korea Masters Badminton Tournament in Asan, with seven players advancing to the second round of women's singles, while all six men's singles players crashed out in the opening round. In the women's singles, Anmol Kher, Tanvi Sharma, Mansi Singh, Rakshita, Ramraj, Ashmita Chaliha, Isharani Barua and Shriyanshi Valishetty progressed to the second round with impressive victories. And that is the end of this news bulletin.
3: ஆகாஷவாணி கோயம்புத்தூர் வானொலி நிலையம் நேரம் 11:10 மத்திய அலை 999 கிலோஹெர்ட்ஸில் இன்றைய ஒலிபரப்பு இத்துடன் இனிதே நிறைவு பெறுகின்றது. மீண்டும் அடுத்த ஒலிபரப்பு நாளை காலை 5:51 தொடங்கும். ஜெய்ஹிந்த்.